0: commerce ni shet tena ti chuwa intern shet tena hi zone ni khata ti chuwa turani a zone som preta vote thak turani a hemini vek hian vote ser hna turani ang rajya sabha member thana hi mizoram andhra pradesh gujarat karnataka rajasthan madhya pradesh jharkhand manipur meghalaya le arunachal pradesh ate nei ni dona rajya sabha member kalsok turjing a hian prime minister hlui hd devagowda union minister george kurian ne Rafnit Singh te antela Mizoram achon puke vanal ve na natam azo chi adonani votla khuna ta na ruat joni sompreta jing dar ko atanga tlai dar ri theng votla khte hun honani dona vot ka te chu tlai dar nga atangin chiar nga tur ani chanchen thari akaswani aizol tanga ponani a voin chu dar hi la chan ve chanchen thari ponani ang India le Cyprus te chon firfek te do tur sipai intom seven remti nimin khan prime minister narendra modi le cyprus president nikos christodoulas te new delhi an india hendem na hi siam ani a rampan hi thodun na chu strategic partnership hlan kai remti boka shoi pani ten fir fir ka chet na sang sang do zel antum thun soya joint working group on counter terrorism din tur indam nan siam ba ka hian susma soras institute of foreign service te diplomatic academy of cyprus te thodun tur mou ji ani bokani Chanchubu mitema Cyprus President Aimbeng Chungchang Swem Prime Minister Narendra Modi Chuan India le Cyprus te chuan Indo-Pacific Ocean Initiative le India Middle East Europe Economic Corridor manga inkalpona ti changtunna thodun an remte ti a Cyber Security Maritime Security le Counter Terrorism lama thodun an remte ti bo
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं आज हमने साइबर सिक्योरिटी मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है इतना ही नहीं हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे
0: सरकार पिछुआन बांग्लादेश से पाकिस्तान रमरिया स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट कल पुया रमरी फुजोक सीएम अतुम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चौन मिन न्यू दिल्ली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन्वेस्टिटर सेरेमनी एंड रुस्ताम जी मेमोरियल लेक्चर हेत हुसैन रमरी हुन पिना लुरुक थेलोवा सीएम तुरिन थथो मेकनि थिया स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट मंग हेन टू नाइट थिम चंग कंग तक तक मंग इन राम री हिम जो का वेन हिम अनि अंगति आ हे प्रोजेक्ट का हेन ड्रोन रडार कैमरा चंग कंग ने खोल थिल चंग कंग तक तक मन अनि अंगति आ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने थोपो अति ओसम दोन अनि अति बोक चंचिन थर सेट ति टॉप ना नतांग पुई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पुवलन हनन मिजोरम ले त्रिपुरा स्टेट इन कल्पोना मुमल तक ओमचु लोममति थु सोइन थनम स्टेट नेना इन पोना थजोक असियम ने बेसे थु सोइ Mizoram Sarkar zon OSD Chief Minister Pilar Rodingi chu atnapa ngai paka Tourism Director Nachal Turina Ruat India le Cyprus te chuan firfek te do tur sipai in Trom Siemen Remti Sarkar le puichom Bangladesh le Pakistan Ramri Smart Border Project kal puya Ramri puizo ka siamatum chuti zong chu tan chin thar kan pon thei chu ani

यह आकाशवाणी आइजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो ऐप की आरजे किमी के साथ हाजिर है। आज की पहले प्रसारण का पहला हिंदी का पहला खंड है, तो इस खंड में हाजिर है आपकी आरजे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं फाल्गुनी पाठक की खूबसूरत आवाज के साथ और एक गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से खास।

फाल्गुनी पाठक की खूबसूरत आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जोबोई। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत तो कर ही चुके हैं, तो अगले गीत की ओर हम बढ़ेंगे और सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में, और गीत के बोल हैं तेरे हवाले। और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से यानी कि FM जोबोई की तरफ से खास हम समर्पित करना चाहेंगे।

0: तेरे हवाले कर दिया मैंने दिल का हर राज, अब तू ही संभाल ले इसे, ये तेरा ही है अंदाज। ना शिकवा है ना गिला है, बस तेरे ही हवाले कर दिया। ये था अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की खूबसूरत आवाज में, और उम्मीद है आप सभी गीतों का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले फटाफट एक नजर आपके संदेशों की ओर हम डालते हैं, जिसे आप सबने हमें बहुत बहुत प्यार से भेजे हैं। हाँकते अपा बिल खोद थे, इन्होंने हमें लिखा है, आरजे किम की मिजिंग लमची बैले वही नहीं दूती हूं नुआम तका इमन थे इनान दू सकना का लानत से इला प्ले ले तुर्खा गुड बॉय मैं मोईती अपर परिपू ओमेगा सांग थे इतान कहलाने अरुंती ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गीत हम आपको भी समर्पित करना चाहेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, ध्यान देंगे आपके संदेशों की ओर भी हम जरूर। तो चलिए ये रहा अगला गीत, मैं रहूं या ना रहूं, ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए भी, और खास जिन्होंने हमें ये प्यारा सा संदेश भेजा था।
1: डेविड मेरी एक फ्रेंड है।
2: हाथ धोए।
1: मीन्स बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। आपने भी किया था?

हजार बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

मैं रहूं या ना रहूं, मेरी मोहब्बत रहेगी, तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, चाहे वक्त बदल जाए या दुनिया दूर हो जाए, मेरी दुआओं में हमेशा तेरी ही चाहत रहेगी। ये था अरमान मलिक और अरमान मलिक की खूबसूरत आवाज में, और उम्मीद है आप सभी हमारे गीतों का आनंद ले रहे होंगे। तो मौसम भी गुलजार है, तो चलिए क्यों ना इस

गीतों को भी और भी हम गुलजार क्यों ना बनाया जाए। तो चलिए ये रहा अगला गीत, बहुत ही मशहूर गीत होगा विशाल मिश्रा की आवाज में आप सभी के लिए।

विशाल मिश्रा की आवाज में। और चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा, चलिए गीत का नाम हम नहीं बोलेंगे, आप सभी लोगों की हमेशा यही फरमाइश होती है इस गीत की, तो चलिए इस गीत का आनंद लीजिए और बताइए किसने गाया ये गीत।

0: तो कैसा लगा गीत? ये था सनम पुरी और जोनिता गांधी की आवाज में। और चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा बहुत ही खास और जुबिन नौटियाल की आवाज में होगा। तो चलिए लेते हैं इस गीत का आनंद, और लीजिए जरूर आप सभी भी इस गीत का आनंद। हम और आप लेते हैं इस गीत का आनंद।
1: इसका क्या मतलब?
2: अब तेरी परमानेंट बुकिंग हो गई और तू तो गया, लेकिन अभी तक तेरा पूरा बायोडेटा मैंने नहीं पता।
1: अब बायोडेटा?
2: हाँ, मतलब तोलने से तो नहीं है, जो लड़कियां घुमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आई लाइक टू नो यू अ लिटिल बेटर।
1: हाँ, तो उसके लिए रोज मिलना पड़ेगा।
2: हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ?
3: हाँ, तो कल शाम 4 बजे मैं फ्री हूँ। हाँ,

0: तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? बताया क्यों नहीं मुझे?
1: क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर देगी।
0: नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने, समझ आई?

जुबिन नौटियाल की आवाज में। और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो ऐप के आरजे किम किमी के साथ। और चलिए उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा अरिजीत सिंह की आवाज में।

अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में। और वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत आप सभी के लिए होगा और लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ ठीक 11:20 पे। सुनते रहे 100.7 पर FM जो है।

स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी के इस दूसरे खंड में। हाजिर है 100.7 FM ज़ोए में आपकी आरजे किमकिम के साथ। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और गीत के बोले तेरी आंखों का अंदाज कुछ कहता है, और गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से भी।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, और आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपके आरजे किम किमी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा कहो ना प्यार है फिल्म का गीत, अलका याग्निक की आवाज में नहीं होगा, आशा भोसले की आवाज में।

आशा भोसले की आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो आपके आरजे की किमी के साथ के गए थे। यानी नमस्ते जी, आपको नमस्ते। मिंग पुआंग रंगलु तुका कशे मन लोगा आत्या आरजे किम किमी के नी एंग पो नी से प्ले ले तुर का एफएम रेगुलर तक आंगा इतला चिन तु रमा तुई रियाल तुना नजरत हॉस्पिटल चलत लांगा ओमेक तान अलो दम छतनान अलो दम छतले थुआई थे ना कहलाने अरुंती आ। ठीक है, अगला गीत हम रमातुई रियाल के लिए हम समर्पित करना चाहेंगे। तो अगला गीत होगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

सोनू निगम की आवाज में। और चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा साधना सरगम, सुजाता भट्टाचार्य, उदित नारायण और शंकर महादेवन और सोनू निगम की आवाज में।

चलिए इसी गीत के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का, और लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ। आज का आखिरी खंड जो होगा दो ठीक 2 बजे, तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, और इसी के साथ सुनते रहिए 100.7 पर FM जो है।

0: यह आकाशवाणी है इजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपके आरजे किम किमी के साथ। और चलिए आज का आखिरी खंड, हिंदी का आखिरी खंड, तो वक्त को बिल्कुल जाये नहीं करते हैं, सुनते हैं इस खंड का पहला गीत, मेरे पसंदीदा गीतों में से एक, आप सभी के लिए पेश है विशाल शेखर की आवाज में।
1: ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए।

विशाल शेखर की आवाज में। और बढ़ते हैं चलिए इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा उदित नारायण की आवाज में मन फिल्म से। मेरे पसंदीदा गीतों में से एक गीत के बोल हैं, नशा ये प्यार का नशा है।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपकी आरजे किमकिमी के साथ। और चलिए, ये है इस आज के प्रसारण का आखिरी खंड। इस खंड में आप सुन रहे हैं अपनी आरजे की पसंदीदा गीतों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

चलिए दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत होगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे। और इसी गीत के साथ अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, और हमें सुनते रहिए 100.7 पर FM जो। इसी गीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ, और आप सभी को आपकी RJ किमी की तरफ से शुभ संध्या।

0: lovely nigga. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया।

0: किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi, Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse agrah hai, iska jyada se jyada laabh uthayein. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame. Union

हेलो नमस्कार और चिवाई दोस्तों, मैं आरजे टैम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107 पे एफएम जॉय। दोस्तों बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर आज शनिवार का दिन भी है, घर बैठे आप लोग आराम कर रहे होंगे, पूरे सप्ताह कामों में व्यस्त होके आज के दिन घर बैठे रिलैक्स करने का दिन है। तो कहेंगे मिजोरम में तो मौसम भी बढ़िया है, अभी के लिए गर्मी बहुत ज्यादा थी पर बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ी नहीं बहुत राहत दी कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके वहां पे भी उतनी ही राहत होंगी मौसम की, गर्मी से थोड़ी आपको आराम मिले होंगे। तो इसी के साथ इस खंड की शुरुआत करेंगे, पहला गीत प्रस्तुत करने का समय भी हो चुका है। दोस्तों जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं यानी कि आकाशवाणी आइजोल एफएम साथ सुन रहे हैं, पहला गीत आप सभी के नाम होगा आरजे टाइम्स की ओर से। तो पहला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत, फैमिली फिल्म कहेंगे इसको, जी हाँ पूरे परिवार के साथ देख पाओगे इस फिल्म को। कौन से मूवी के गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की खूबसूरत आवाजों में होगा ये, राजेश रोशन के संगीत पर। और क्या कहना फिल्म से होगा, सैफ अली खान, प्रीति जिंता, चंद्रचूड़ सिंह, फरीदा जलाल, अनुपम खेर थे इस फिल्म पे और बहुत सारे कलाकार। तो गीत के बोल में आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ ए दिल लाया है बहार।

दोस्तों, इस खंड का पहला गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कविता कृष्णमूर्ति और हरि हरान की खूबसूरत आवाजों में क्या कहना। तो इसी के साथ अगला गीत सुनने से पहले मैं आपके संदेशों की ओर नजर रखने वाला हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं हमसे, आपके संदेशों की ओर हमें जानकारी मिलेगी यहाँ पे। तो हाँ, आप बिल्कुल क्लियर से लिखते हैं, आर्ज टाइम्स नमस्ते नमस्ते आपको भी मेरे दोस्त इदम ट्राइम आखते अप्पा खा इलप ले तो और का मा आओ वही चो तोफल मदांगो अली कोल्ड्रिंक ता निसे ओमेगा सांग ते या निबोक्से जेलल जा माविक उना का उना पाविक कोंग ते या मेंगमो ते या मिस्टर मेंगमो ते आपके लिए भी चुना गया है गीत यहाँ से रमा तुरिया रेम्बो आपके लिए भी रमा ही तो रेम्बो नी ना अलंग रियंग कशिया अचक शको मया नी ही ने थे लो ही ने लो ani ti la ka soi si ola ngo chang na sa via wang se rama kha itan ka la ne ron ti poka bahut bahut shukriya mere dost ngak te pa bilkul clear se hame sandesh dene ke liye अरे मेरे दोस्त दुर्गेश जी, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से एक बार जुड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुर्गेश नागन पूरे लिखते हैं गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार नमस्कार आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। दुर्गेश नागनपुर और पूरे फैमिली आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। ग्राम जसवादी डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश से इतनी दूर से आपका संदेश हमारे यहाँ पे आया है, तो दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी कहते हैं आपको दुर्गेश जी। मेरे भाई उनाउपा विकुंगते एस एम एस कंछी और अर्जे उनाउपा वीकेंड चिबायो आपको भी चिबाई सी एल सी वीकेंड एनी बोका हैप्पी भी होगा इतना ही लेते और का नाकते पा बिल्कुल क्लियर ता लिया लिया मुन पुतिनी तान फान सकलो वालो मामले तो के अगला गीत सुनने के बाद मैं यहाँ पे हमारे दोस्त मिस्टर मैंगमोतिया क्या लिखते हैं मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये अगला गीत जो होगा फिर से एक बार रोमांटिक वाली गीत सुनेंगे, रोमांटिक मूड में है आर्ज अटेम्प्ट्स आज शाम, क्योंकि मौसम ही ऐसा रोमांटिक वाला है। तो अलका याग्निक कुमार सानू और उदित नारायण की खूबसूरत आवाजों में होगा आपके लिए गीत के बोल कौन सा होगा मस्ताना मौसम है वाला गीत सुनेंगे, क्योंकि मौसम बहुत मस्ताना है यहाँ मिजोरम पे अभी हाल ही में। तो जितने भी लोग गर्मी से तड़प रहे हैं ये गीत आपको थोड़ी शांति और ठंडी दिलाएंगे इसी उम्मीदों के साथ। जी हाँ, नदीम और श्रवण के संगीत पर फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा, तो आइए चलिए सुनते हैं।

आज से जाने मन दिल है तुम्हारा तो मेरा दिल भी हमेशा आपके साथ ही रहता है। आशा करता हूं कि जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं यानी कि आकाशवाणी आजोल एफएम द वॉइस ऑफ दशमलव सात से आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगला गीत सुनने से पहले फिर से एक बार हमारे दोस्त मिस्टर मेघमोतिया क्या लिखते हैं मुझे पढ़ के सुनाना होगा। और ये लिखते हैं मिस्टर थर्म्स नमस्ते दिप्ति नुवम ले। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए और शुभ संध्या ट्लाई हुन मन नुवम ओ ट्रेन पा अली कॉल रिंग बहुत दिनों के बाद दम छत नहीं बैसे अंगानी पोही हेलो हेलो आर्ज टेम्स कन्वेन तो काद वेती ने के इन दू ए मरे गे जो हेलो मा हियान कतमंग रेगा तीला अंगाक ते पाते उना पवी कुंग ते तेने हि चो कनिन तोंग रंग छुने ने एली एरो हि चो खोचक लम होई वेम ओ तुई मोते तेंग इन अगर नहीं है तो ठीक है दम छत नहीं बैसे बोकांग ओ एलबी रेंट लाई लिखते हैं आरजी व प्ले गुड इवनिंग ले बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए और आपको भी गुड इवनिंग मेरे दोस्त इप्ले नल्लू तो पहले तो वर्खाई तान ले एफ एम जो गाय तू जोंग जोंग तान ओ शुक्रिया एल बी जी। अगला गीत भी उतनी ही रोमांटिक भरी वाली गीत होने वाले हैं जितने भी लोग हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं उनको तो जरूरी गीत पसंद आएंगे। लता मंगेशकर लेजेंड कहेंगे बॉलीवुड के सिंगरों में से वो हमारे बीच नहीं रहे फिर भी उनकी सदाबहार गीत हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ नसीब फिल्म से गीत के बोल मेरे नसीब में तू है कि नहीं मेरे नसीब में तो तू है। तो ये गीत आप सभी के नाम फिर से एक बार आरजे टेम्स की ओर से और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आईजोल एफएम द वॉइस ऑफ दशमलव सात।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था, 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

मेरे नसीब में तू है कि नहीं मेरे नसीब में। जी हाँ, मेरे नसीब में आप हो कि नहीं पता नहीं, फिर भी मैंने पहले ही कहा था कि मैं जानता हूं कि मेरे नसीब में तो आप लोग हमेशा से बसे होंगे मेरे दिल पे। तो अगला गीत सुनेंगे उससे पहले यहाँ पे, जी हाँ अगला गीत बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी लोग आकाशवाणी आइजोल FM Zoice 107 के साथ जुड़े हैं, आपके लिए गीत फिर से एक बार मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ किसी भी माध्यम से, यानी कि रेडियो से हो या कांटे पोस्ट से हो या फिर मोबाइल एप्स। जी हाँ, आप मोबाइल एप्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से भी। यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा हो तो ये आप इस तरह से जुड़ सकते हैं हमसे। किस तरह से? प्ले स्टोर पे जाइए, ऑन एयर एप्स डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए FM 107, जरूर आपके लिए मिलेंगे और हमसे जुड़ सकेंगे किसी भी कोने के साथ से। मैंने पहले ही कहा था, तो इसी के साथ अगला गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है। फिर से एक बार मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ तेवर फिल्म से गीत सुनेंगे हम। जी हाँ, ये कौन सा गीत होगा? जोगनिया गीत सुनेंगे हम श्रुति हसन की आवाज में। जितने भी लोग इस गीत को पसंद करते हैं उन सभी के नाम एक गीत में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं जोगनिया।

जो गनिया वाला गीत सुना था हमने तेवर फिल्म से। तो इसी के साथ अगला गीत जो होगा इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फिर से जुड़ने वाला हूँ बॉलीवुड के नए पुराने खूबसूरत गीतों के साथ, यानी कि 7:30 पर फिर से एक बार मैं लौट के आने वाला हूँ। तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहेगा आकाशवाणी आजोल एफ एम 107.7। इसके बाद आने वाली है आपकी प्यारी सी सुरीली सी आवाजों की मालकिन, जी हाँ आरजे पुई, उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिएगा। आरजे रेम पुई बहुत ही बढ़िया गीत लेके आने वाली है इस बार, तो उनका साथ भी देंगे। इसी उम्मीदों के साथ आरजे टेम्स आपसे विदा लेता है, और अंतिम गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा गुरदीप मेहंदी की आवाज में दिल विल के। जी हाँ गीत जो होगा मेरी शादी कराओ फिल्म से। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, संदेश दिए हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए आरजे टेम्स आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं 7:30।

हेलो नमस्कार और चिबाई दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे 107.7 पे FM जॉय। मैंने पहले ही कहा था कि आपसे 7:30 पर फिर से एक बार मैं बॉलीवुड के नए पुराने गीतों के साथ लौट के आने वाला हूँ, तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि 8 बजे तक मैं आपको बॉलीवुड के नए पुराने गीते सुनाता जाऊंगा। यदि आपको संदेश भेजने हो तो आपको पता है कि कौन से नंबर पर आपको संदेश भेजते हैं। यदि पता नहीं हो तो फिर भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं व्हाट्सएप SMS के जरिए। तो उसके लिए आपको पता नोट करना होगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके लिए पहला मैं गीत आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, उसके बाद में कौन से पते पर आपको संदेश भेजना है मैं पढ़ के सुनाऊंगा।

तो पहला गीत इस खंड का झनकार बीट्स फिल्म से सुनने वाले हैं हमें तुमसे प्यार कितना वाला गीत। जी हाँ, ये गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। जितने भी लोग पुराने जमाने के गीत को पसंद करते हैं, इसको थोड़ा रिमिक्स किया गया है अमित कुमार के और उनके सभी साथियों के। जी हाँ, कोरस की ओर से हम सुनने वाले हैं हमें तुमसे प्यार कितना है। तो ये गीत पहला गीत होगा अभी इस दूसरे भाग में हमारा। पहला गीत तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आप सभी के नाम की।

हमें तुमसे प्यार कितना आई हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कमंगा इजी अच्छे ही कसई थे लवनी थूपन हंसई दोनी ला अदई दोनों तीना नहीं सोप मगर

Gina hi sakte tu mare bina itello chuan dam khat chu hi ka har sat bokani ati ni to ye geet itne romantic bhare geeton ke baad dosto agla geet sunne se pehle hamare dost Sizet kya likhte hain main padh ke sunane wala hu ye likhte hain music trang in shringhal che aron ti re wo ti ti ti re wo aron ringhal khan aron shringhal che tani mo to आगे लिखते हैं हुन मन्नु पोट्सले अति शुक्रिया आपको भी अच्छा समय और वक्त बीते यही मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं दोस्त और ला पखत कथंग में थे ओ तेने ओ ते रंग में थन हुन गन नेलवा जनिन हिंदी भी कहें मा से पने खत्तल हि छो ती छो गे गन तुम दोनों ने तो दोस्तों अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं यहां पे फिर से एक बार चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से सुनने वाला ये गीत सलमान खान रानी मुखर्जी और प्रीति जिंदा थे इस फिल्म पे तो गीत के बोल दीवाना है ये मन क्यों पागल है धड़कन वाला गीत जी गीत रोमांटिक भरे गीत कहेंगे रोमांटिक मौसम और सिनेरियो के साथ हम सुनने वाले हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से अनु मलिक के संगीत पर अलका याग्निक और सोनू निगम के आवाजों में तो आइए चलिए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके

दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुमसे प्यार मुझ पे आया है। इस खूबसूरत रोमांटिक वाले गीतों के बाद दोस्तों अगला गीत सुनने वाले हैं हम, पर उससे

यहाँ पे हमारे दोस्त क्या लिखते हैं हम पढ़ के सुनाने वाले हैं। सेक्रेटरी साहब का संदेश आया है बहुत दिनों के बाद। कनिंतों खातला मैं तो यहाँ पे मेरे दोस्त लिखते हैं और जो तेम इन तो नवा खाद वे तेरो ती वेगा तनिया नहीं पोन देख ची गए पोन गलो ती वेरेगा एकदम छत नहीं बेई से बुकाने। सेक्रेटरी साहब जी आशा करता हूँ कि जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो अगला गीत भी पुराने जमाने के टाइप के गीत हम सुनने वाले हैं। थोड़े 80s 90s के जमाने को छोड़ के हम जाने वाले हैं अभी यहाँ पे 60 के जमाने पे। बहुत ही पुराने वाले गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ और ये गीत किस्मत फिल्म से होगा, महेंद्र कपूर की आवाज पे और ओपी नैयर के संगीत पर। जी हम सुनने वाले हैं अगला गीत लाखों है यहाँ दिल वाले। ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी ये गीत और म्यूजिक संगीत और सुनता हूँ तो मुझे अलग ही दुनिया पे लेके जाता है। सुकून देने वाली गीत कहेंगे इसको। तो आइए चले सुनते हैं फिर से एक बार लाखों है यहाँ दिल वाले।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे ये था हलचल फिल्म से देखो जरा देखो, उदित नारायण और कुणाल गांजावाला की खूबसूरत आवाजों में। तो इसी के साथ अगला गीत सुनने से पहले हमारे दोस्त हितेंद्र दास लिखते हैं, हेलो आर्जेंटाइन्स, Sonville is a famous place of the state of Assam. It is the second largest wetland of Asia. It is located in Assam, Sribhumi district in the village area. In Sonville, there are several villages. बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त। अब मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में, पर अभी जानकारी मिल गई है, शुक्रिया हितेंद्र जी। अगला गीत भी मैं आपके लिए और आपके पूरे परिवारजनों के नाम में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और जितने भी लोग आपके आसपास है आप सभी के नाम भी होगा ये गीत। और हमारा अगला SMS, गर्ल जनरेशन बहुत दिनों के बाद हे पोहे का निंतों खात ले मैं एकदम ठतुरंग आया हूँ। ये लिखते हैं, खाना खा लिया क्या अधिकम आ दिक्ल तुकमा से कला खाई भी लो अभी तक नहीं खाया हमने लाई लो देवा ए हुन ट्रैप तो तुई तो किन गने दोना नहीं हो। और के वाला लिखते हैं, आर्ज टेम्स का दम ट्रा ए नंग पोई दम ट्रा ती कश्रिया अलो मुमल तुके बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप भी और तंदुरुस्त रहेगा, लो दम ट्रा जेल दोने नंग पो ओ रमा तुई रे रेम्बो कल लश रंग से या खोई लमांगे योम ओ लार बतंग से। तो अगला गीत इस खंड के लिए मेरा आखिरी गीत होगा, इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक बार बॉलीवुड के नए पुराने खूबसूरत गीतों के साथ। जी हाँ, मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आने वाला हूँ 9:02 पर, दार को वाले मिनट नहीं अगला ले लेंगा। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आज वाले FM वॉइस और दशमलव सात। इसके बाद आने वाली है आपकी प्यारी सी सुरीली सी आवाजों की मालकिन आरजे रेम्पी, उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिएगा अपने मन पसंदीदा गीतों के साथ। तो अंतिम गीत इस खंड का जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर बनाए गए फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज पे और शंकर जय किशन के संगीत पर, पूरे लेजेंड कलाकार है इस गीत में। तो गीत के बोल ले गए दिल गुड़िया जापान की, ये गीत में छोड़ के जाने वाला हूँ आपके लिए लव इन टोक्यो फिल्म से। तो मिलते हैं 9:02 पर, सुनते रहे आकाशवाणी एज ऑल FM 100.7।

हेलो नमस्कार और छिवाय दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे हिंदी के इस आखिरी भाग में स्वागत कर रहा हूँ। और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जॉय। दोस्तों, इस भाग में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ बॉलीवुड के नए पुराने खूबसूरत गीत है। अधिक समय ना लेते हुए मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ पहला गीत, जो कि होगा आतिफ असलम की खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, आतिफ असलम को हम सब जानते हैं, बॉलीवुड में बहुत सारे गीत गाए इन्होंने, तो पहला गीत कुछ इस तरह। तो आइए, चलिए सुनते हैं ये गीत, फिर से एक बार मैं सभी श्रोताओं के नाम प्रस्तुत करना चाहूंगा।

कुछ इस तरह आतिफ असलाम की खूबसूरत आवाज में हमने गीत सुना था। तो इसके बाद यहाँ पे संदेशों का समय हो चुका है। लल दिन पुया चिन खान का चेयरमैन लव चे चे का सोनू खान SMS का लव लो था। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दोबारा संदेश भेजने के लिए। ये लिखते हैं आरजे प्ले ले तो रखा नगमा तान ले लोगा कवे जोंग जोंग तान ले का ट्रेन ते जोंग जोंग तान ललिन पुया फाल्कन वेंग लाई से। बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए और हमें सुनने के लिए। और आपके पूरे दोस्तों को मैं अगला गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा उनके लिए। मिस्टर मैग मोहतिया क्या लिखते हैं मिस्टर टर्म्स इतान ले इछास ताली उलिया होते रे छासी तू बर गे अनि ओ तू बाबी गे गन छु सका गो उन बाबी कुक तेला खोवेला मिलेर बर बाबी ही गन छु मे दो ने वेतरो मैग मोहते एंगे गई दान ले। और हमारे दोस्त हितेंद्र दास लिखते हैं आरजे टर्म्स नमस्कार नमस्कार आपको भी मेरे दोस्त। आकाशवाणी आइजोल स्टेशन FM जॉय बैंड 100.7 MHz सोन बोली इज द वेटलैंड। ओके मैंने पढ़ लिया था। और ओके आगे लिखते हैं Sonville is the wetland of water in rainy season. These are several boats to carry people. Also, visitors also came. Akashwani is my friend. Akashwani, amar bondhu. Tumi ki amar bondhu. Akashwani sara ami baste parina. Please play the song of If Possible. Song line Salam. Movie name Umrao Jan. Okay, zarur prastut karenge aapke liye. Dedicated specially you, Arz Attempts, and all the star members of Akashwani as well. Parivar and my friend और मिनल जोय अगस्त बॉय जून अगस्त बॉय हो सकता है ये फिटनेस बॉय एंड ऑल लिसनर्स हु लाइव लिसनिंग फ्रॉम हितेंद्र दास एड्रेस सोनबिल कुदाली असम। ये हितेंद्र दास ते ओमनो खोपन नो मेल खो मेयरन सोइदाना फेचोन मीटलो तो ते पन तमवियो निंग गफिया तो FM जोय जापन पसरी ट्रेन छियन ते पो मछरनी ओ मिनलांगा हे जोन अगस बॉय ते जोन अगस बॉय खोवेला मिलेर बेर खानियम ओ ले फिटनेस बॉय ते पोनिंग। सो आपके लिए गीत चुना गया यहाँ से। तो अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिर से एक बार सभी टार्जनों के नाम गीत के बोल टार्जन माय टार्जन आज मैं सिखा दू प्यार कैसे करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार मैं संदेश पढ़ने वाला हूँ इनका नुई पचो के थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो आइए चलिए सुनते हैं टार्जन माय टार्जन। ये गीत अलीसा चिनॉय की आवाज में होगा और इस गीत के संगीतकार हैं कौन हमारे बप्पी लहरी। तो आइए चलिए सुनते हैं टार्जन माय टार्जन।

टार्जन, ओ माय टार्जनी गीत जब भी मैं सुनता हूँ तो हमारे खास करके जितने भी हमारे लिसनर्स हैं एफएम वॉइस और 107 के जो हमें मैसेज भेजते हैं उनकी उन सभी की बहुत याद दिलाती है मुझे। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत सुनने से पहले फिर से एक बार संदेशों का समय हो चुका है जिनका मैं संदेश पढ़ने वाला हूँ। ये है नुई पचुआ लिखते हैं आरजे टेम्स प्ले ले तोर का इदिव ती पुईत ने नि तान ले एफ एम गाय चतु ते जोंग जोंग तानो। नुई जी बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए। और आगे लिखते हैं आरजे टेम्स पीसी मजारा टेल विन तू तू तान ये थलन सक ओ यहाँ पे आगे लिखते हैं कन चियर ले लोको। नुई लिखते हैं पीसी मजारा टेल विन के वाला ले मिस्टर मैगमोय ते तान ओ नुई जी बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमें सुन रहे हो तो दजार सा अमिंग तक चुकन सही रही लवा ओ बहुत ही बुरा मान रहे होंगे पर चिंता मत कीजिए। थिन रिम ओय लवा ती का लमोय तो मैं ते सोक दो ना। यहाँ पे हमारे दोस्त हितेंद्र दास की फरमाइश पर एक गीत मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये गीत होगा सलाम उमराव जान से अनु मलिक के संगीत पर अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज पे। तो आइए चलिए सुनते हैं सलाम।

तो दोस्तों, मेरा जाने का समय हो चुका है क्योंकि 9:38 होने वाले हैं। और जाने से पहले यहाँ पे जितने भी लोगों ने हमें संदेश दिया, हमें सुना है, आप सबको दिल से धन्यवाद कहते हुए मैं जाने वाला हूँ। और जाने से पहले यहाँ पे जितने भी संदेश छूटे, फिर से एक बार मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको। नुए लिखते हैं आर जो टेम्स कलो लंगले लुक्स ओ एफ एम जो फैन क्लब मेंबर जोंग सोंग तान ले आर जे जोंग सोंग तान ओ मेग मोय ते तान तेरा उते इनो ओके नई पच्ची ओजी बहुत बहुत शुक्रिया। सीजत लिखते हैं ला मिला ये काली काली आखे खालो प्ले ला महु नम तो लो इ थंग क्ला इ लुक अ तियर खान थंग दो ने मोग तिया इ रे वंग वंग ता सिया ट्रेन पा नेक्स्ट आओ तो अगला गीत अंतिम गीत इस खंड के लिए जो अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा दिल क्या करे फिल्म से अजय देवगन काजोल थे। इस फिल्म पे कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज पे इस गीत के साथ आरजे टाइम्स आपसे विदा लेता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी वायदे के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।